0: You're listening to WKCR 89.9 FM New York and WKCR HD. I hope you all are enjoying the celebration thus far. The last track that played was the conclusion of Jugobandi Volume 2, Rog Mishra Shivran Jani, Tal Deep Shand. We are going to continue here with Power and Grace, another two-volume album released by Sharesha, with the first and second both being released in the year 2002. The first track is a bit of an introduction to the works in Hindi, followed by Raga Durga. Hope y'all enjoy.
1: के टाइम पास कर रहा था मैंने कहा दूसरा दिन हो जाए तो कुछ अभी छः तारीख हो गई मैं अभी सुबह सुबह जब रात देरी होती है और दूसरा दिन होता है तो सुबह सुबह हम आराधना करते हैं उसी आराधना के स्वरूप मैं राग दुर्गा बजा के सुबह की प्रार्थना करता हूँ धन्यवाद राग दुर्गा में आलाप और जोड़ में कुछ ध्रुपद शैली से जोड़ बजाऊंगा जिसमें श्री भवानी शंकर जी पखावज में मुझे साथ देंगे

इसके पश्चात अभी मेरी आराधना तो खत्म हो गई, अब इसके बाद में आप लोगों के लिए मैं राग मालकौंस, मालकौंस में एक रचना बजाऊंगा, अनिंदो जी बजाएंगे, रचना होगी झप ताल में।